ष्टेयाता तवाचोता सोवाने हके विनष्टेयाता न एञता सोवाने आ याय आ याय अह ए मंग मंग कतोरित अमम नामे पोषे नोनोवा ओया मंग मंग कतोरित अमम नामे पोषे नोनोवा ओया शेका